0: गुड मॉर्निंग छोड़ गुड मॉर्निंग छोड़ हाथ
1: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4
0: अरे 1 2 3 4
1: मैं कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4